सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन के फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए विचार मंथन। जो अपने समय का सबसे अधिक दुरुपयोग करते हैं वे ही समय की कमी की सबसे अधिक शिकायत करते हैं। ये था आज का विचार मंथन।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, जगत जननी जय भारती की महिमा अपरंपार है। जगत जननी जय भारती संपूर्ण जगत की रचना करने वाली ज्ञान शक्ति और चेतना की देवी हैं। जो भी सच्चे मन से उनके शरण में जाता है, मां उसके कष्टों को हमेशा हर लेती हैं।

श्रोताओं, अभी आपने वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत जो भक्ति रचना सुनी रमेश यादव और समूह स्वर में, राम नाम स्वयं में एक महामंत्र है। राम का नाम कल्पवृक्ष है जो सभी कामनाएं पूर्ण करता है और हमें जीवन में धैर्य, दया, कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। भगवान राम का गुणगान भव सागर को पार लगा देता है।

श्रोताओं, अभी आपने पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भक्ति रचना सुनी। एक सच्चे भक्ति की प्यास भगवान के दर्शन मात्र से बुझ जाती है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तड़पता है, बस वैसे ही भक्त की आँखें अपने आराध्य के रूप को देखने व्याकुल हो जाती हैं।

श्रोताओं, अभी आपने हेमंती शुक्ला की आवाज़ में ये भक्ति रचना सुनी। हमारा शरीर एक पवित्र मंदिर की तरह है और हमारा हृदय वृंदावन है जिसमें स्वयं ईश्वर वास करते हैं। यह आध्यात्मिक भाव हमारे मन को शांति देने वाला होता है।

0: अभी आप आशा भोसले की आवाज़ में ये भक्ति रचना सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। इस विकास ने मानव समाज को पृथ्वी से अंतरिक्ष तक विभिन्न क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने में सफलता दिलाई है। निसंदेह मनुष्य का जीवन सुख सुविधाओं और समृद्धि के चरम शिखर पर जा पहुंचा है। सफलता के विजयोन्माद में मनुष्य ने प्रकृति का कितना दोहन किया है, ईश्वर प्रदत्त साधनों का कितना दुरुपयोग किया है, ये चिंता का विषय है। शुद्ध जल की व्यवस्था को ही ले लें। हम जानते हैं कि दुनिया में जितना भी जल है उसमें से मात्र 2% ही पीने योग्य है। लगातार पानी के अपव्यय को रोकने में जन जागरूकता ही आड़े आ रही है। आज अनावश्यक पानी बहाकर हम अगली पीढ़ी को किस मुसीबत में डाल रहे हैं, क्या ये सोचने का विषय नहीं है? गिरता हुआ भूजल स्तर, सूखती नदियां और जलाशय इस भयावह संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमारे नाती पोते पीने के पानी के लिए तरस जाएं। पानी का अपव्यय तो रोका जाना ही चाहिए। दूसरा कारगर कदम जल संसाधन के प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में उठाया जाना आवश्यक है। भारत में ताज़ा जल के स्रोत के रूप में नदियों का पानी और भूमि सतह का पानी उपयोग में आता है। जमीनी जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। ये हमारी आदतों, बढ़ती जनसंख्या और मूल आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य उपयोग के लिए पानी प्रयुक्त होने के कारण है। पानी की हर बूंद का न्यायपूर्ण उपयोग और अपव्यय को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। संतुलित भोजन और शुद्ध पेयजल प्रदान करना हमारी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। जीवधारियों को भयमुक्त करने का यही उपाय है।
0: श्रोताओं, अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर अंशुजा तिवारी और वाचक माधवी एनडे। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए एक महत्वपूर्ण सूचना। श्रोताओं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपके लिए लेकर आया है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC सीजन 2। अगर आप मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करने वाले कोई उद्योग संघ, संगठन या संस्थान हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डिजिटल मीडिया, फिल्म और संगीत जैसे क्षेत्रों में अपने इनोवेटिव चैलेंज के प्रस्ताव भेज सकते हैं। चयनित प्रस्तावों को सरकार की ओर से अनुदान मिल सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। आज ही ऑनलाइन पोर्टल wavsbazaar.com पर जाकर अपना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर हैं सुरेश वाडेकर।

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्यावासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदर पूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

0: अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज़ में श्री रामचरित मानस गान। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामिकी। आज का विषय है धान में यूरिया का प्रयोग।
1: धान की फसल और अन्य विभिन्न फसलों में पौधों की वृद्धि या बढ़वार अच्छी तरह से हो सके और पौधे पूरे रूप से वृद्धि कर सकें, इसके लिए नत्रजन तत्व की आवश्यकता होती है, जिसे यूरिया या अन्य उर्वरक जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट या DAP से पूरा करते हैं हम। यूरिया में 46% नत्रजन होता है, इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट में 20%, अमोनियम नाइट्रेट में 33% और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नत्रजन तत्व होता है। पौधों में नत्रजन देने से पौधों की वृद्धि समुचित होती है और पत्तियों का रंग हरा रहता है। नत्रजन देने से पौधे भूमि में उपलब्ध फॉस्फोरस और पोटाश का समुचित उपयोग कर लेते हैं और उत्पादन बढ़ता है। यदि नत्रजन की कमी हुई तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, दाने पतले पड़ते हैं और जड़ों का विकास कम होता है, फसल का उत्पादन इसलिए कम हो जाता है। अब आपको यूरिया देना है तो यूरिया देने के 3 तरीके होते हैं। या तो यूरिया को आधार खाद के रूप में खेत में मिला दें, या फसल में यूरिया का छिड़काव कर दें, या खड़ी फसल में यूरिया का पर्णी छिड़काव करें। यूरिया को आधार खाद में मिलाने का तरीका आपको आता है, फसल में यूरिया का छिड़काव भी आपको आता है। अब जो खड़ी फसल में यूरिया देने का तरीका है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि धान्य फसलों में नत्रजन उर्वरक ज़्यादा देना पड़ता है और नत्रजन उर्वरक भूमि में देने के तुरंत बाद पानी में घुलकर पौधों के

0: उपयोग के लायक ही हो जाता है, किंतु नत्रजन की दी गई पूरी मात्रा पौधे एक साथ नहीं ले पाते, जिससे कि नत्रजन उर्वरक जमीन में रिस कर या गैस के रूप में उड़कर नष्ट हो जाता है। तो धान की फसल में जब 1 या 1.5 माह की ये फसल हो जाए, तब रोपा लगाने के 20 से 25 दिन के बाद की अवस्था में यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए। चूंकि यह छिड़काव पत्तियों पर करना पड़ता है, इसलिए जब पौधों में पत्तियां निकल आए तभी यूरिया का छिड़काव फायदेमंद होता है। यह छिड़काव फसल की गभोट अवस्था आने के पहले हर 15 दिन के अंतर पर कई बार किया जा सकता है। यूरिया के घोल का बनाना उपयोग में लाए जाने वाले स्प्रेयर पर निर्भर करता है, यानी किस प्रकार का स्प्रेयर आप उपयोग कर रहे हैं। हाथ या पैर से चलित स्प्रेयर यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो इसमें 2 से 3% घोल का छिड़काव किया जाता है, जबकि यदि शक्ति चलित स्प्रेयर का उपयोग आप कर रहे हैं तो इसमें 15% घोल का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 15 किलोग्राम यूरिया के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी का घोल हाथ या पैर चलित स्प्रेयर से बनाना चाहिए। पर यदि आप शक्ति चलित स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं तो 100 लीटर पानी में 15 किलो यूरिया का घोल बनाना चाहिए। धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले नींदा मारने के लिए नींदानाशी रसायन का प्रयोग भी 1 माह की फसल पर होता है। इन रसायनों को यूरिया घोल के साथ मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। इससे समय और छिड़काव की मजदूरी में बचत होती है। छिड़काव में अलग अलग प्रकार के पंप का उपयोग किया जाता है। पहली सावधानी यह होगी कि घोल स्प्रेयर के अनुसार बनाएं। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो यह है कि अगर तेज हवा या जल्दी बारिश होने की संभावना हो तो यूरिया का छिड़काव बिल्कुल ना करें। हवा बंद होने के बाद या बारिश होने के बाद ही यूरिया के घोल का छिड़काव करें। तीसरी बात, पानी बरसने के बाद जब पौधे से पानी सूख जाए तब घोल का छिड़काव करें। आखिरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि फूल आते समय यूरिया बिल्कुल ना छिड़कें। अब हम सभी जानते हैं कि उर्वरक काफी महंगे हो गए हैं और जमीन में डाले गए नत्रजन उर्वरक का अधिक से अधिक 40% ही पौधे ले पाते हैं, किंतु यदि आपने पत्तियों पर छिड़काव किया है तो ये पूरा का पूरा नत्रजन पौधे उपयोग कर लेते हैं। और ये देखा भी गया है कि जमीन में दिए गए 40 किलो नत्रजन और पत्तियों पर छिड़काव किए गए 15 किलो नत्रजन का प्रभाव एक सा पड़ता है। इसलिए छिड़काव के द्वारा महंगे उर्वरक की बचत भी आप कर सकते हैं। साथ ही गभोट के पहले दिए गए उर्वरक से दाने वजनी होते हैं और उपज बढ़ती है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि सामग्री। इसके अंतर्गत आपने धान में यूरिया का प्रयोग, ये जानकारी सुनी।

हमारे आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में लीजिए आप सुनिए 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी, 10:10 पर विश्व दर्पण

आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे रात 9:30 पर चर्चा का विषय है, रात 10 बजे संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग।

सुबह 7:20 पर सुनिए गुड मॉर्निंग जबलपुर। 8 बजे का समय समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। सुबह 9 बजे लोक

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी 10:58 से न्यूज हेडलाइन से। शाम 5 बजे इसी क्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा वाणी।

शाम 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये प्रस्तुति है NCERT की। 6:30 पर लोक संगीत में कलाकार हैं देवी सिंधाइया और 6:45 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे शर्मिष्ठा घोष के गाए कुछ चुनिंदा गीत।

शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिए नील हरित काई का प्रयोग। जानकारी देंगे डॉक्टर ए.के. रावत। रात 8 बजे संसद समीक्षा। 8:15 पर सुर्खियों में

रात 8:30 पर सुनिए विधानसभा समीक्षा, 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे का समय है News@9 का स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुए हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदी चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्ये दल सदस्याः नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम् अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहः तथा केन्द्रीय गृह सचिवः गोविंद मोहनः लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षाया प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान विरुद्ध्य दृढ़ निग्रह कर्तुम अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षण च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मेसिडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मेसिडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभय देशयोः संबंध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धतां द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः संभावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति। भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुल गांधिनः लोककल्याण मार्गे विरोध प्रदर्शनस्य निन्दाम करोत्। तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलीपींस देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति। तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अंतर्गतम् आयोजितेषु विदेशमंत्री स्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: इंडिया विल होस्ट अ 3-day मीटिंग

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आ रहे बेहतर परिणाम, खोले गए करोड़ों बैंक खाते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। और लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय, कई जिलों में हो रही बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से केवल व्यापार तक सीमित न रहकर निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लंबे समय की साझेदारी बनाने का आह्वान किया। स्कोपे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने कहा,
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: हर परिवार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 से प्रारंभ की गई जनधन योजना के बेहतर परिणाम आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है। कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इनमें 32,68,00,000 खाते महिलाओं के हैं, जबकि 45,62,00,000 अधिक खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। श्री चौधरी ने यह भी बताया कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 27,84,00,000 से अधिक लोगों का नामांकन हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58,78,00,000 से अधिक और अटल पेंशन योजना में पिछले महीने तक 9,29,00,000 से अधिक लोगों का नामांकन किया जा चुका है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री ने कहा,
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने कहा है कि प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री यादव लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य अभियंताओं के साथ दलों द्वारा भोपाल, जबलपुर, गुना, इंदौर, सीधी, उज्जैन और छतरपुर जिलों के 35 निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की कल समीक्षा कर रहे थे। भरत यादव ने सड़क निर्माण में असंतोषजनक गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कल अधिकारियों को आईपीएस की रैंक लगाई। रैंक पाने वाले अधिकारियों में निमिषा पांडे, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सभ्यसाची सराफ और समर वर्मा शामिल हैं। डीजीपी मकवाणा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उपलब्धि उनके समर्पित सेवा भाव का प्रतिफल है। समाचारों में वक्त ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वतंत्रता पूर्व के चुनौतीपूर्ण दौर में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र सर्वोपरि और प्रखर राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया और लाखों लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन दर्शन पर विचार

0: साझा करते हुए कहा।
1: इस बात को आज वास्तव में ये अलग प्रकार से महसूस हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी का मंचन और डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल दर्शन जो था, समानता का दर्शन, और उस समानता के दर्शन के लिए एक समान कानून का पास होने का आज सौभाग्य मध्य प्रदेश की धरती पर, ये कितना अद्भुत संयोग।
0: केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों को और बावड़ियों के जीर्णोद्वार तथा रिचार्ज पिट और चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी विषय पर आज सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी भोपाल के खास कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में को सुनना ना भूलें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और जल संरक्षणवादी उमा शंकर पांडे रहेंगे। 2-3 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर सहित 30 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश हुई। माओगंज, उदयपुरा, बीरसिंहपुर सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुरकुला, सतना, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, मैहर, राजगढ़, बैतूल और कटनी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश भर में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी प्रदेश में सामान्य से करीब 17% तक बारिश कम होने की खबर है। खंडवा संवाददाता के अनुसार जिले में कल तक 295.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं सतना से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 317.2 मिलीमीटर और मैहर में 240.2 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। गुना जिले में 309.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। आपको समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और कई महत्वपूर्ण शासकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। खंडवा जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल आज जिले के भ्रमण पर रहेंगे। आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने पोषण समिति की बैठक में पात्र हितग्राहियों के आधार नामांकन और अपडेशन के लिए स्कूल और सेक्टर स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। सतना पुलिस विभाग के नशा मुक्ति अभियान के तहत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में चित्रकला, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया। मंदसौर जिले में डायरिया रोको अभियान के तहत पीएचई विभाग ने पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन किया और ग्रामीणों को जल जनित बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। मैहर में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने 17 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा और 40 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इंदौर में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। गुना कलेक्ट्रेट में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 295 आवेदनों पर सुनवाई की। इस दौरान कई मामलों का त्वरित निराकरण भी किया गया। शिवपुरी जिले में करगिल विजय दिवस और सेवा सुशासन के 12 वर्ष पर पीएम कॉलेज में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही है। भोपाल नगर निगम के अमले ने सड़कों पर घूमने वाले 7 मवेशियों को कांजी हाउस और 4 घायल पशुओं को आसरा चिकित्सालय भेजा है। नीमच में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गठित विशेष सेल की बैठक कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी
1: ये मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एआई ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह

गुड मॉर्निंग जबलपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जीवन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज के आपाधापी वाले जीवन में हर इंसान स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की चाह भी रखता है, मगर ये सब कहने या सोचने मात्र से संभव नहीं होता है। इसके लिए हमें बहुत से जतन करने पड़ते हैं। फिलहाल धीरे धीरे होती सुबह की बेला में हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत से गीत के साथ करते हैं।

श्रोताओं, हमने जैसे बात की, जीवन बड़ा ही खूबसूरत है और स्वस्थ जीवन को और बेहतर खुशहाल बना सकता है योग, ध्यान, प्राणायाम। जी हाँ श्रोताओं, योग को अगर हम अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि योग न केवल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से हमें पूर्ण रूपेण स्वस्थ बनाता है। हमारे अंदर जहाँ दिनों दिन सकारात्मकता, आत्मविश्वास लाता है, वहीं हम आंतरिक रूप से मजबूत भी होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है, पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे शरीर को प्राप्त होती है और हम हरदम हर वक्त तरोताज़ा, ऊर्जावान महसूस करते हैं और खुश रहते हैं।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी जबलपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग जबलपुर। गुड मॉर्निंग जबलपुर में अब हम आपको सुनवाते हैं कलामे शायर। आज के शायर हैं मोहम्मद हनीफ पूर्णम।
1: गजल का मतलब समाज फरमाइए। रूदा दे गम सुन कर क्यों वो अश्क बहाने लगता है, रूदा दे गम सुन कर क्यों वो अश्क बहाने लगता है, जैसे उसको उसका माजी याद साने लगता है, जैसे उसको उसका माजी याद साने लगता है। और शेर देखिए, अपनी काली पिठाई ना सदा छुपाए रहता है,

है जबो दिल घबराने लगता है, ऐसा अक्सर होता है जबो दिल घबराने लगता है। अपनी अपनी

0: गजल का शेर बहुत हासिल शेर समात फरमाए।
1: रात अंधेरी खत्म हुई और अदल का सूरज

शायर में अभी आपने मोहम्मद हनीफ पूर्णम को सुना। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रकृति और योग का बड़ा गहरा संबंध है और बारिश के मौसम में हमेशा हम जानते हैं प्रकृति हरी भरी नज़र आती है, लेकिन जहां बारिश के आते ही मौसम सुहावना खुशनुमा हो जाता है, वहीं कुछ परेशानियां भी साथ लेकर आता है। इस समय बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना भी कहीं कहीं करना पड़ता है। ये एक प्राकृतिक आपदा है। यह अत्यधिक बारिश के होने से, नदियों के उफान आने से या फिर चक्रवातों या बांधों के टूटने के कारण होती है। इन विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे बचें, किन बातों का ख्याल रखें, बात करेंगे। पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो हमेशा हमें सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। कभी भी बाढ़ की स्थिति में, बाढ़ के पानी में पैदल चलने की, तैरने या फिर गाड़ी चलाने की गलती ना करें। साथ ही श्रोताओं, जब कभी घरों में पानी भर गया हो तो तुरंत बिजली के मुख्य स्विच को बंद कर दें और गीले कपड़ों को, गीले जो उपकरणों को बिल्कुल भी ना छुएं। एक और महत्वपूर्ण बात कि अपने साथ पीने का साफ पानी, ज़रूरी दवाएं, टार्च और ख़राब न होने वाले खाने की सामग्री भी तैयार रखें। ये कुछ सावधानियां आपके जीवन को सुरक्षित तो रखेंगी, साथ ही मौसम का आनंद भी आप बेहतर तरीके से उठा पाएंगे।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

मीडिया वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने

0: जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे

0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोक सत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting

श्रोताओं, अगला गीत है गुमराह फिल्म का। स्वर दिया है महेंद्र कपूर ने, साहिर लुधियानवी के शब्द हैं, संगीत से सजाया है रवि ने।

श्रोताओं, आप सुनिए एतबार फिल्म का ये गीत। इसे गाया है आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह ने। गीतकार हैं हसन कमाल और फारूक कैसर। बप्पी लहरी का संगीत है।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हमने लिया है अनुरोध फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से केवल व्यापार तक सीमित न रहकर निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लंबे समय की साझेदारी बनाने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के 16वीं विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और कई महत्वपूर्ण शासकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। भोपाल नगर निगम के अमले ने सड़कों पर घूमने वाले 7 मवेशियों को कांची हाउस और 4 घायल पशुओं को आसरा चिकित्सालय भेजा है। स्वतंत्रता पूर्ण के चुनौतीपूर्ण दौर में डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्र सर्वोपरि और प्रखर राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया और लाखों लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल रात भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने कहा है कि प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुरकला, सतना, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, मैहर, राजगढ़, बैतूल और कटनी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनेंगे आप लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रसधार। इसमें आप रविशंकर श्रीवास्तव और डॉक्टर राजकुमार जैन के गाए लोकगीतों को सुनेंगे। पहले सुनिए रविशंकर श्रीवास्तव का गाया ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रविशंकर श्रीवास्तव के गाए लोकगीत। अब सुनिए डॉक्टर राजकुमार जैन के गाए बुंदेली लोकगीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं लोक रसधार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं डॉक्टर राजकुमार जैन के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रसधार। इसमें आपने रविशंकर श्रीवास्तव और डॉक्टर राजकुमार जैन के गाए बुंदेली लोकगीतों को सुना। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है एक दूजे फिल्म का, और आवाज़ दी हैं लता मंगेशकर, अनूप जलोटा ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

श्रोताओं, अगला गीत है फिल्म हीरो से। रेशमा की आवाज़ हैं, शब्द हैं आनंद बख्शी के, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है।

श्रोताओं, अगली फिल्म है लोफर। आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, शब्दों में इसे ढाला है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आप सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत। आवाज़ दी हैं किशोर कुमार ने, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।

0: केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित, वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन जिले के लिए महीना मिलाजुला रहा। जिले के झिरनिया में पिछले दिनों आयोजित सिकल सेल शिविर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल जैसी अनुवांशिक बीमारी के उन्मूलन के लिए उपचार के साथ साथ जन जागरूकता भी आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसे जन सहभागिता से ही पूरा किया जा सकता है। जल गंगा संवर्धन अभियान में खरगोन ने प्रदेश में छठा स्थान प्राप्त किया है। अभियान के अंतर्गत जिले में 8352 जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के जिलास्तरीय समापन समारोह में विधायक बालकृष्ण पाटीदार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मलिंद कुमार नागदेवी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। खरगोन में पिछले दिनों सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, वन अधिकार से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, आयुष्मान कार्ड अभियान में तेजी लाने, सिकल सेल उन्मूलन अभियान को प्राथमिकता देने, पेयजल और सिंचाई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग में ड्रॉप आउट बच्चों की मुख्य धारा में वापसी, स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन का शुभारंभ पिछले दिनों हुआ। विकसित भारत गारंटी ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन का शुभारंभ पूर्व मंत्री खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री पाटीदार ने कहा कि यह मिशन ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के साथ जल संरक्षण और आजीविका सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खरगोन जिले के झिरनिया विकासखंड ने नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में मध्य प्रदेश जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर दिशा समिति की बैठक में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने पूरी टीम और जिला प्रशासन को बधाई दी। उधर झिरनिया और भगवानपुरा विकासखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए विशेष परिवहन सुविधा शुरू की है। इसके साथ सुमन पंचायत पहल के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर रेखा राठौर ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन और शासन की प्राथमिकता है। इससे जन सहभागिता से मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत खरगोन नगर पालिका क्षेत्र के 29 श्रद्धालुओं का वैष्णो देवी यात्रा के लिए पिछले दिनों रवाना किया गया। श्रद्धालु बस से खंडवा और वहां से रेल मार्ग से वैष्णो देवी गए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, उपाध्यक्ष भूलू कर्मा सहित पार्षदगण और अधिकारियों ने शुभकामनाओं के साथ विदा किया। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पिछले दिनों सपत्नीक खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर का भ्रमण किया। उन्होंने मां नर्मदा और बारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की तथा अहिल्या किला और महेश्वर साड़ी बुनाई केंद्र का अवलोकन किया। जिले में अमृत हरित महाअभियान के तहत नगर पालिका खरगोन ने शहर में लगभग 1500 पौधों का रोपण किया। अभियान के अंतर्गत औषधीय फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। महत्वाकांक्षी अभियान धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष के तहत जिले में लगभग 34,65,00,000 रुपए की लागत से छात्रावासों, अधीक्षक और आवासों तथा मरम्मत कार्यों सहित 29 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दस्तक अभियान शुरू किया गया है। 31 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए किसानों को 31 मई तक फसल बीमा कराने की अपील की गई है। योजना में कपास, सोयाबीन, मक्का, अरहर और मूंग की फसलें शामिल हैं। प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने जिले के कृषि क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों से संवाद किया। उन्होंने बिड़िया मिर्च की गुणवत्ता और निर्यात की संभावनाओं का भी अध्ययन किया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के दौरान लगातार जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन पुलिस द्वारा जिले के सभी 18 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव पर 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

वंदे मातरम अर्थात भारत माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। यह भारत का राष्ट्रगीत है जो देश के प्रति अगाध प्रेम, सम्मान और देशभक्ति की भावना को व्यक्त करता है। ये गीत न केवल मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता की स्तुति करता है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय के अंदर असीम शक्ति और राष्ट्रभक्ति जगाने का एक माध्यम भी रहा है।

किसी विविध रंगी गुलदस्ते जैसा है हमारा देश, जिसका हर एक फूल रंग और खुशबू में अपने आप में खास और दूसरों से अलग है। उसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। बोली, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज अलग, फिर भी सबकी पहचान एक, यानी भारतीय। और भारतीयता का यही जज्बा हमारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। वास्तव में

आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। मेरे वे पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीष शर्मा। समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कोपिये में व्यवसाय फोरम में उत्तरी मैसिडोनिया से भारत के साथ निवेश संबंधों में विस्तार का आह्वान किया। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। अमरीका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसिडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया है। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसिडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसिडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसिडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों

0: की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे।
2: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे ज्यादा असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देश अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और इसीलिए चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि ये वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष है। ये याद दिलाने का अवसर है कि भारत और आसियान देश अधिक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर प्रगति के लिए मिलकर प्रयास कर सकते हैं। विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक सहित आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए 2 दिन की यात्रा पर फिलीपींस के मनीला में हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती हुई भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया।
3: भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश व्यापार नीति समीक्षा के माध्यम से व्यापार और संबंधित नीतियों का निरीक्षण करते हैं। भारत का दृष्टिकोण ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार में भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और व्यापार नीतियों में परिवर्तन के कारण व्यापक बदलाव हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। भारत स्वदेशी व्यवसायियों की वैश्विक बाजारों तक पहुँच बढ़ाने के लिए व्यापार समझौता का विस्तार कर रहा है। उसने वैश्विक व्यापार मुद्दों के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। समीक्षा के दौरान विकासशील देशों से सहयोग पर भारत के विशेष महत्व पर भी बल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। बच्चों पर डिजिटल सामग्री के हानिकारक असर को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ती जा रही है। दुनिया के अनेक देश सोशल मीडिया तक पहुँच रोकने के प्रयास में लगे हैं। अमरीकी सेना ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए। दोनों देश हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि सेना ने ईरान पर फिर हमला किया। ये हमले वाणिज्यिक जहाजों को धमकी देने, ईरान की क्षमता को और कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। इन हमलों में सैन्य संचालन केंद्र, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और सैन्य रसद अवसंरचना को निशाना बनाया गया। ईरान ने पिछले 3 महीनों में इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से गुजरने वाले 30 से ज्यादा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कोपिये में व्यवसाय फोरम में उत्तरी मैसेडोनिया से भारत के साथ निवेश संबंधों में विस्तार का आह्वान किया। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला उन्नति हुडा से होगा। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सारंगा।

प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। लीजिए सबसे पहले सुनिए दोस्ताना फिल्म का गीत। स्वर है मोहम्मद रफी का, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आपने दोस्ताना फ़िल्म का गीत सुना। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नेबर टाउन से, आराधना चौक से सीमा, मधु, आरती, पोलीपाथर लालकुआ, जबलपुर से दिलीप रजक, सुमन रजक, सागर रजक और बेबी परी रजक, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, ग़ुलाम साबिर राही, बहराज जहां। इसी गीत को सुनना चाह था राजपुर मध्य प्रदेश से घिसु धिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, चैतेक बिरक और मीना बिरक। लीजिए अब सुनिए बेमिसाल फिल्म का गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की। शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा से श्री शुभम सिंह ठाकुर, पिंडरई जिला मंडला से सुमत कुमार जैन, कबीर जैन, वरुण जैन और समस्त जैन परिवार, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनीश सेतिया। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर बेमिसाल फिल्म का ये गीत।

0: लीजिए सुनिए एक सूचना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपके लिए लाया है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC सीजन 2। अगर आप मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करने वाले कोई उद्योग, संघ, संगठन या संस्थान हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डिजिटल मीडिया, फिल्म और संगीत जैसे क्षेत्रों में अपने इनोवेटिव चैलेंज के प्रस्ताव भेज सकते हैं। चयनित प्रस्तावों को सरकार की ओर से अनुदान मिल सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है, तो आज ही ऑनलाइन पोर्टल webbazaar.com पर जाकर अपना प्रस्ताव जमा करें। सूचना समाप्त हुई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर

0: महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आप तो ऐसे ना थे। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाज़ है मनहर उदास की, गीतकार निदा फासली, संगीतकार उषा खन्ना। इस गीत के लिए पत्र लिखे हैं आप सभी ने, खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू, प्रतीक साहू, छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा, गंज डंडवारा से मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बेगम, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू बिजली वाले, अफसाना बेगम, महज अभिषेक, बादाम अली और किशमिश जहां बेगम। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर आप तो ऐसे ना थे फिल्म का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए अब सुनिए 20 साल बाद इस फिल्म का गीत, आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। इस गीत को पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं जिला रायसेन खापड़खेड़ से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती, ममता गोमती,

रिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे।

0: हमें याद करेंगे।
1: और लीजिए अब सुनिए रास्ते प्यार के इस फिल्म का गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को पसंद करने वाले आप सब हमारे श्रोता हैं जिन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता और क्रिश श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर रास्ते प्यार के इस फिल्म का ये गीत।

इसी गीत के साथ सारंगा अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:58 हुए हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की श्रृंखला में लीजिए सबसे पहले सुनिए न्यूज हेडलाइन, इस घंटे की खास खबरें।

0: हफ्ते की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसरों के साथ युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें उन्होंने दिल्ली हमलों के मद्देनजर मुस्लिम सेनाकर्मियों से 20,000 इस्तीफे मिलने का दावा करते हुए दिखाया गया है। सरकार के अनुसार यह वीडियो AI द्वारा निर्मित डीप फेक है जिसे जनता को गुमराह करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और कई महत्वपूर्ण शासकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। भोपाल नगर निगम के अमले ने सड़कों पर घूमने वाले 7 मवेशियों को कांचे हाउस और 4 घायल पशुओं को आश्रय चिकित्सालय भेजा है। मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2025 के अंतिम परीक्षा परिणाम के आधार पर दस्तावेज परीक्षण, चरित्र सत्यापन, मेडिकल परीक्षण की कार्यवाही 27 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। और गुना, शिवपुरकुला, सतना, चिवनी, बालाघाट, पन्ना, मैहर, राजगढ़, बैतूल और कटनी समेत कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए। पहले तो मैं चीख कर रोया और फिर हंसने लगा। बादल गरजा, बिजली चमकी, तुम याद आए। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा। प्रस्तुत है आपके लिए फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, और जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम,
0: किससे बात कर रहे हैं हम, परिचय दे दीजिए।
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: जी लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद मैडम।
0: उज्जैन में बारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, कल थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, बाकी मौसम तो अभी खुशनुमा बना हुआ है। बारिश का इंतजार रहने के, बारिश आ जाए, क्योंकि बरखा रहने का तो सभी जगह इंतजार हो रहा है।
0: हाँ, और अब तो झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई है कई जगह प्रदेश पर, आज पानी बरस ही रहा है। और
1: हाँ जी जी, बहुत जगह थोड़ी बारिश जो पहले हुई थी ना, पहले जो बोनी के समय में होती है, हाँ। उस समय तो सब पूरे प्रदेश में और पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में हुई है,
0: हाँ।
1: पर अभी बीच में थोड़ा ये 15 दिन का अंतराल जो बहुत मुश्किल भरा निकला है मैडम।
0: ठीक है, ये तो खैर ऐसा है कि अब जब भी बारिश बरसेगी तो सुकून आपको मिलेगा। बहरहाल आप ये बताएं कि आज आपने फोन किया है, पहला फोन कॉल है आपका, और कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: तो एक और चरस फिल्म का जी, आजा तेरी याद आई, बस इस आपका ये गीत है।
0: जी जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, आपके

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: जी निकिता जी, आपसे जब बात हुई थी जब से आप कॉल लगाए मेरा।
1: कौन बोल रही हैं आप?
0: कैसे हैं आप?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं। आप हसीना भी मंसूरी बोल रही हैं?
0: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदा नाका इंदौर से।
1: क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
0: मैडम तेरी मेहरबानिया का गाना सुनना है, फिल्म का नाम है और गाने के बोल है। काजल उड़ाया मैंने चली पुरवाई, काजल लगाया मैंने काली घटा छाई, जुल्फ लहराई तो रात हो जाएगी, जो नहीं होनी वो बात हो जाएगी। ये सुना दीजिए।

0: हेलो
1: जी
0: मैडम, नमस्ते। शैतान
1: नमस्ते
0: सिंह मीना बोल रहे हैं राजस्थान से। थैंक
1: जी, बहुत स्वागत है आपका
0: यू मैडम। मैडम एक गाना सुनना है,
1: जी। अपनी पसंद बताएं।
0: फिल्म का नाम है राम लखन और गाने के बोल हैं ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैडम जी, ऐसा कुछ गाना है जी। जी
1: जी
0: जी मैडम यही वाला।
1: जी चलिए, 1-2 का 4, 4-2 का 1।
0: जी जी जी मैडम जी।

0: हाँ, मैं कटनी से सुनील गर्ग बोल रहा हूँ
1: जी। नमस्कार सुनील गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: आप कौन दीदी बोल रही?
1: मेरा नाम नीतिका वर्मा है।
0: अच्छा दीदी, आज हमने आपकी परछाई यहाँ पिक्चर का गाना सुनना रहा, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। जी, आपकी परछाइयां पिक्चर
1: जी
0: का।
1: आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी जी परिचय दीजिए आपका।
1: मैं सोनिया सोनी बोल रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं सोनिया जी?
1: मैं घर पे रहती हूँ, काम करती हूँ।
0: अच्छा, और रेडियो सुनती हैं हमारे?

0: जी कभी कभी फोन लेते हैं, टाइम मिलता है तो घर के काम से।
1: जी, तो आज आपने फोन किया है, आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
0: हम तुम्हारे सनम का टाइटल ट्रैक। जी मैम, आप कौन बोल रही हैं?
1: जी, मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ।
0: ओके।
1: चलिए, आपके पसंद का ये गीत हम रेडियो पर भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया है। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते जी, मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास तिवारी ले बोल रहा हूँ।
0: जी देवीदास जी बहुत स्वागत है जी, बताएं आज फोन किया है, आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
1: पसंद गीत तो बताऊंगा मैडम, जब आज चंदवा में बरसात हो रही है
0: जी,
1: तो आज फिल्म का नाम है हेलो, इसका बता रहा हूँ मैं आपको, फिल्म का नाम माशुक।
0: जी माशुक का
1: ओ यारा जिन्होंने देखिए जिताई
0: जी, ये गीत आपका रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, आपकी पसंद।
1: जी थैंक यू
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते
0: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं राजेंद्र नगर गंज बासोदा से। हाँ
1: जी
0: दीदी, और मौसम कैसा है भोपाल में अभी?
1: जी बारिश हो रही है आज तो।
0: हाँ इधर तो बासोदे में भी पानी गिर रहा है।
1: चलिए अच्छा है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अभी
0: नजदीक है सावन तो नजदीक है।
1: हाँ मानसून आ गया, ये बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मानसून तो जरूरी है, पानी गिर ही नहीं रहा था।
1: हाँ, फसलें खराब हो जाती हैं हमारी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: जी। तो आज
0: और दीदी
1: जी
0: आज कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, फोन करेंगे
1: फोन
0: सुना
1: करेंगे
0: है?
1: सुने हैं
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी, बताएं अपनी पसंद का गीत
0: दीदी हमें सुनवा देना बॉर्डर फिल्म का,
1: कौन सा।
0: बहुत संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है।
1: जी, संदेश आते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: हमें क्या है, चिट्ठी लिखने का बड़ा शौक है, इसलिए हम फौजी वानियों के लिए ये
1: हाँ
0: गीत सुनाना चाहते हैं, जो हमारे जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए, उन नौजवानों के लिए
1: जी, बहुत धन्यवाद आपने।
0: जो अपने भी घर नहीं पहुंच पाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके
1: हाँ
0: लिए चिट्ठी के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम भेज रहे हैं।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। ये है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और आकाशवाणी भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जा रहा कार्यक्रम है। फोन करें, गीत सुने।
0: जी बिल्कुल सही, आपका परिचय बताइए।
1: तुलसीराम साहू, ग्राम खापरखेड़ा, जिला रायसेन, एमपी, मध्य प्रदेश, भोपाल।
0: जी,
1: जी,
0: तो आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: ये आज मैंने फिल्म का नाम बंजारन।
0: बंजारन फिल्म, बोल बता दीजिए गीत के।
1: ये जीवन जितनी बार मिले।

0: तो श्रोताओं, आज के मौसम के बदलते मिजाज पर मेरा कुछ यूं कहना है कि तब्दीली जब भी आती है मौसम की यादों में, किसी का यूं ही बदल जाना बहुत याद आता है। तो ये था आज का फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बीरोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जल अवतरण करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसरों के साथ युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा।

0: सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें उन्हें दिल्ली हमलों के मद्देनजर मुस्लिम सैन्यकर्मियों से 20,000 इस्तीफे मिलने का दावा करते हुए दिखाया गया है। सरकार के अनुसार ये वीडियो AI द्वारा निर्मित डीप फेक है। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुर, सतना, सिवनी, बालाघाट, राजगढ़ और बैतूल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति हुड्डा से होगा। प्रतियोगिता के अन्य वर्गों में भी आज भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं देवरी भाटरपारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर महाराष्ट्र से अभिजीत, श्रीमती सरिता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश, नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित, कुमारी ध्वनि, बंडा बेली से लक्षणपुर रामजी और इनके परिवार के सदस्य, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है विवाह फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

महादेव खाट अमलेश्वर से तुमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश, बाटरपारा से द्वारिका प्रसाद, किशोर, दीपक और जाविंद्र वर्मा, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आप सभी ने सुनना चाहा है आशिकी फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। गीत समीर का है, तस बनाई नदीम श्रवण ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके परिवार के सदस्य। इंदौर से लाल फतेह चिंदानी, लीला फतेह, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी ने सुनना चाहा है तलाश फिल्म का नगमा। मोहम्मद लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और तर्ज बनाई एस डी बर्मन ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं तलाश फिल्म का ये नगमा।

रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर, जितेंद्र और मीका बिरक, अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया, शोएब, मुस्तबा, रऊफ भाई और शाहिद, अकोला से रमेश और वैशाली। आप सभी ने सुनना चाहा है आशिक फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अनुराधा पॉटवाल ने, गीतकार हैं समीर। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

औरंगाबाद से राजेश सामले, शीतल, राशि और राजदीप, अनिल साबी, पूजा, सुषमा, श्वेता और इनके परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने ये ख़त हमें भेजा इंदौर से। आप सभी ने सुनना चाहा है मीरा का मोहन फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने। गीत इंदिवर का है, तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पे ये नगमा।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी काय कांतारे का सातवां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारी द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का सातवां भाग।

अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़कर चले जाते हैं। मार्ग में वृक वन में एक अपरिचित उनके प्राणों की रक्षा करता है। उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर वो आचार्य नागदत्त के आश्रम में बांध देता है। अश्व नीलमणि ठीक हो जाता है। आचार्य नागदत्त नीलमणि को अवंती भेजने की व्यवस्था करते हैं। अब आगे।

0: राजा भर्तृहरि का प्रिय अश्व नीलमणि अवंती आ जाता है। उसे आचार्य नागदत्त के आश्रम से चंद्रसेन लेकर आते हैं। चंद्रसेन को रानी पिंगला बुलाती है। चंद्रसेन महल के अतिथि गृह में बैठे हैं। रानी की सेविका वैसिका कहती है,
1: आपने तो मधुरव्य का स्पर्श भी नहीं किया ब्रह्मचारी।
2: देवी, आप वय में मुझसे बड़ी हैं, अतः आप नाम से पुकारें तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे चंद्रसेन कहते हैं।
1: इस भांति मैं भी देवी नहीं हूँ, मेरा संबोधन है वैसिका।
2: किंतु मैं आपका नाम नहीं लूंगा, दीदी कहूं तब क्या अधिक ठीक नहीं होगा? इस महानगर में मेरा कोई परिचित मित्र नहीं है। गोप आश्रम से मेरे साथ आया है, दो दिन के साथ में मैं उसे समझ ही नहीं पाया। वो भी सियात उतना ही मेरे प्रति अजनबी है। वो बाहर झांकना भी नहीं चाहता। अपने भोजन शयन सुविधा से निकलकर उसके लिए केवल अपना परिवार है।
1: सांसारिक व्यक्ति है, अपनी सीमाओं में जीता हुआ। अब तुम मुझे दीदी कहो या बहन, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु क्या तुम दासी और अनुचरी को बहन के रूप में स्वीकार कर पाओगे?
2: क्यों नहीं, मैं भी तो सेवक हूँ।
1: अंतर है ब्रह्मचारी, तुमने स्वयं सेवा का व्रत चुना है और मैं क्रय की गई सेविका हूँ, दासी, स्वामी के आदेशों से बाध्य।
2: तो आप मेरी दीदी बनना नहीं चाहती?
1: ऐसा तो मैंने नहीं कहा चंद्रसेन, पहले मुंह तो झूठा करो।
2: आपकी जिव्या से अपना नाम सुनकर मुझे सुख मिला। बहुत स्वादिष्ट है ये मधुरव्य, किंतु व्रती को सांसारिक सुख से बचना चाहिए, संयम बाधित होता है, सुख का परितोष क्रमशः व्यसन में बदल जाता है। पाने की इच्छा बलवती होती जाती है और न पाना दुख बन जाता है। पाने के लोभ में विचलन और उसके बाद अकरणीय का रूप ले लेती चेष्टाएं, ये पाप कर्म की प्रवृत्ति है दीदी।
1: बहुत ज्ञान की बातें करते हो चंद्रसेन।
2: नहीं दीदी, ज्ञान तो शास्त्रों में है, जहां उद्विग्नता क्लेश विकार से मुक्त होकर ही कुछ सीखा और समझा जा सकता है। ये तो मेरा अनुभव है। लीजिए, आपकी आज्ञानुसार मैंने जलपान कर लिया, अब आप मेरी एक याचना स्वीकार करेंगी?
1: भाई की बात तो माननी ही पड़ेगी। यदि असाध्य ना हो, संभव हो, करनीय हो।
2: कोई बड़ी बात नहीं है दीदी, मुझे महामात्य ने 5 स्वर्ण और 5 रजत मुद्राएं दी हैं। मेरे लिए उनकी कोई उपादेयता नहीं है। एक मुद्रा मैं गोप को देने वाला हूं, परिवार के लिए कुछ क्रय कर लेगा। शेष 4 स्वर्ण मुद्राएं आप रख लीजिए। लीजिए, मेरे किसी भी काम की नहीं है।
1: किंतु इन्हें मेरे पास क्यों रख रहे हो?
2: इसलिए कि आप मेरी दीदी हैं, आपके सिवा मेरा यहाँ कौन है।
1: अच्छा, रख लूंगी।
2: ये लीजिए।
1: तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है चंद्रसेन?
2: परिवार बहुत विशाल है मेरा परिवार दीदी। 20 कुष्ठरोगी, अनेक अशक्त, वृद्ध, बावरे और अनेक मूक जैसे सेवक, परिचारक, सेवाश्रम के कार्यकर्ता, आचार्य नागदत्त से मुझ तक लगभग 100 से अधिक सदस्य हैं मेरे परिवार में दीदी।
1: हो, 100 तो है, किंतु मैं तुम्हारे माता पिता के संबंध में पूछ रही थी। सेवाश्रम में कहां से पहुंचे हो?
2: आया तो गोपांचल से हूँ, ब्राह्मण के घर में जन्मा था। बाल्यकाल में माँ नहीं रही, उसकी धुंधली सी स्मृति है। और रहने दीजिए, किसी अन्य अवसर पर सब कुछ सुनाऊंगा।
1: ठीक है, ये मुद्राएं मेरे पास तुम्हारी धरोहर रहेंगी, जब चाहो ले लेना।
2: ठीक है दीदी।
1: कभी भी आ सकते हो, द्वार पर मेरा नाम लोगे तो प्रवेश मिल जाएगा।
2: बहुत अच्छा।
1: नाम स्मरण है ना मेरा, वैसिका दासी।
2: आपका नाम और छवि तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता दीदी, आपको देखते ही मुझे आश्रम के भेषज्ञ त्रिलोचन का स्मरण हो आया। आप दोनों की छवि में अद्भुत साम्य है।
1: त्रिलोचन, कौन है ये त्रिलोचन?
2: सेवाश्रम के भेषज्ञ हैं। मुझ पर उनका असीम स्नेह है, बिल्कुल लघु भ्राता मानते हैं मुझे।

0: त्रिलोचन, वह क्या होगी उनकी? कहां से आए हैं?
1: दीदी, आश्रम में किसी का कुल, ग्राम, गोत्र तथा देश जानने की प्रथा नहीं है। कोई स्वयं बता दे तो अलग बात है। वहां केवल दो ही भाव हैं, पीड़ा और सेवा। आश्रम वासियों को जोड़ने के लिए यही पर्याप्त है। हाँ, भेषज्ञ त्रिलोचन की वय मेरे अनुमान से वो मुझसे 5-7 वर्ष वरिष्ठ होंगे।
0: क्या तुम्हारे भेषज्ञ का वर्ण गंदूषी है?
1: हाँ, मुझसे कुछ उजला है।
0: क्या उनके बाएं कपोल पर क्षत का कोई चिन्ह है?
1: वो तो मुझे ज्ञात नहीं।
0: चंद्र,
1: दीदी,
0: एक काम करना, आश्रम के भेषज्ञ से उनका देशाकुल पूछना।
1: अच्छा जी।
0: यदि वो दक्षिणत्य कालाधर से हो तो किसी भांति उनके कपोल पर घाव की रेखा का चिन्ह देखने का प्रयत्न करना। यदि ये तीन संयोग मिल जाएं, तो उनसे पूछना कि क्या उन्होंने गोदावरी की जल यात्रा की है। त्रिलोचन की आंखों में कहीं अश्रु दिखाई दे तो तुरंत मुझे सूचना देना।
1: ये क्या दीदी, पहले मुझे रुलाई आई और अब तुम रोने लगी।
0: रो नहीं रही हूँ चंद्रसेन, अपनी आंखें धो रही हूँ कि कहीं कोई आशा की किरण दिखे तो उसे चीन तो सकूं। अच्छा, अब जाओ, उज्जैनी में दर्शन और भ्रमण करो। ये नगरी बड़ी मोहक है। और हाँ, लौटने से पहले भेंट करके जाना।
1: जो आज्ञा दीदी। प्रणाम दीदी।
0: प्रणाम।

0: वैसिका से भेंट करके चंद्रसेन नगर भ्रमण को निकल पड़ते हैं। रथ चालक उनसे कहता है कि महास्पद के बिना वो इन्हें रथ से नगर भ्रमण के लिए नहीं ले जा सकता है। नगर में उन्हें पहरुआ रोकता है।
1: ए, रुको! ए, रुको!
2: अरे
1: हाँ हाँ, तुम सही कह रहा हूं। कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो? यहां भीतर कैसे पहुंचे?
2: अरे भाई, हम महामात्य के अतिथि हैं।
1: तुम राजकीय अतिथिशाला में ठहरे हो?
2: हाँ, हम महाराज का अश्व लेकर आए हैं।
1: उसे जानते हैं?
2: अरे वो तो गोप है, मेरा सही यात्री।
3: बचाइए, बचाइए, बचाइए ब्रह्मचारी जी।
2: हाँ।
3: मुझे बचाए, इन लोगों ने मुझे निरुद्ध कर रखा है।
2: अरे
3: भांति भांति के प्रश्न करते हैं।
1: क्यों, ये तुम्हारे साथ है ये व्यक्ति?
2: हाँ भाई, हाँ आश्रम से भी साथ है। आओ गोप, आ जाओ।
3: हाँ हाँ हाँ,
1: ठीक है ठीक है। कहाँ जाना है?
2: नगर भ्रमण करना है, लेकिन सर्वप्रथम महाकाल के दर्शन करेंगे। अवंती के सनातन शासक तो वही हैं, शेष तो आते जाते रहते हैं। भूलो के चा महाकालो लिंगत्रे नमोस्तुते।
1: किंतु आपने राजकीय वाहन नहीं लिया?
2: आवश्यकता नहीं है, पैदल चलने का स्वाभाविक अभ्यास है।
1: जी जी, जाइए जाइए जाइए।
2: गोप चलो, तुम यहाँ कैसे आ गए?
3: ब्रह्मचारी जी,
2: हाँ
3: मैं एकाकीपन से ऊब रहा था, सोचा राजमहल ही देख लूं, अब यहाँ आने का अवसर कहाँ मिल पाता।
2: हाँ हाँ,
3: किंतु रक्षकों ने रोक लिया, राजमहल देख नहीं पाया।
2: वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे अपना भाई स्वीकार किया है उन्होंने।
3: किसने? महारानी ने?
2: नहीं बंधु, प्रीति और विरोध समान से होना चाहिए। वहां महारानी की एक सेविका है।
3: अच्छा?
2: स्नेहशील और मितभाषी, उनकी छवि हमारे भेषज्ञ त्रिलोचन से बहुत साम्य रखती है। उन्होंने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है, अब हम किसी भी समय महालय में आ जा सकते हैं। किस ओर से महाकाल के लिए चलना है?
3: देव मंदिर की दूरी तो इधर से कम पड़ेगी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इधर से चलते हैं।
3: हाँ चलिए।

0: महाकाल की श्रद्धा के आकर्षण से आवश्ट वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तथा स्वतः प्रकाशित दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अभिभूषित हो जाते हैं। बाहर निकलते हुए चंद्रसेन कहता है,
1: देख रहे हो बंधु गोप, कैसा अनिर्वचनीय आनंद है भगवान शिव के सानिध्य में। जैसे काल और जगत की गति ही ठहर गई हो, न उत्पत्ति है और न विनाश, केवल शांति ही शांति, चिरंतन शांति, अनुभवातीत शांति। ओम नमः शिवाय।
2: अब वो तो है, किंतु आप तो जैन है ब्रह्मचारी।
1: जैन हूं नहीं, होना चाहता हूं। वैसे आसान नहीं है जैन होना, वो एक चर्या है, विचार है, व्रत है। सो मैं एक व्रती मात्र होना चाहता हूं। महाकाल से आशीष चाहा था मैंने कि मेरा व्रत सफल हो, किंतु उनके सामने कुछ भी स्मरण नहीं रहा, स्तुति के श्लोक तक विस्मृत हो गए।

0: उन वृक्षों की छाव में ठहरे।
1: अच्छा अच्छा,
0: मैं तो अपने एक परिचित वणिक के यहाँ जाता हूँ।
1: हाँ ठीक है। गोप, यहाँ से अतिथिशाला कितनी दूर है?
2: लगभग आधा कोस। यदि मुझे लौटने में देर हो जाए तो प्रतीक्षा न करें ब्रह्मचारी।
1: हाँ हाँ,
2: देखिए हाँ। आगे चौक से मुड़कर आप वहां पहुंच जाइए।
1: ठीक है,
2: मैं वहीं आ जाऊंगा।
1: अच्छा,
2: जाता हूँ।
1: ठीक है, जाओ जाओ।

0: राजमहल के द्वार पर चहल पहल हो रही है। सभी चिंतित हो रहे हैं कि चंद्रसेन और गोप कहां गए हैं। चंद्रसेन को देखकर कुमारास्पद पूछते हैं कि आप कहां हो? आपके लिए रथ और शिविका की व्यवस्था तो थी। इसका चंद्रसेन उत्तर देते हैं।
1: आप नहीं थे व्यवस्था के सूत्रधार, ये समझकर मैंने अपना निर्णय स्वयं ले लिया। अब हम यहां नहीं रहेंगे। देवी वसुंधरा तक आर्य नागदत्त का पत्र पहुंचाना है, तो किसी से पूछकर उन तक पहुंच जाएंगे। जाने से पहले वैसिका दीदी से विदा लेना है। आप हमारी चिंता छोड़िए, हमारे कारण आपको जो असुविधा हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें बंधु।
0: कुमारास्पद से विदा लेकर चंद्रसेन महालय की ओर प्रस्थान करते हैं।
2: किधर जा रहे हो ब्रह्मचारी?
1: हम
2: कौन हो तुम? यह राजपथ है, महालय का मार्ग।
1: हमें वहीं तो जाना है विदा लेने।
2: किससे विदा लोगे?
1: देवी व्यासिका से।
2: ठहरो, तुम संदेह जागृत कर रहे हो।
1: भाई, ब्रह्मचारी के पास छुपाने के लिए क्या है?
2: ओह, क्षमा करें ब्रह्मचारी, आप ही हैं जिन्हें देवी व्यासिका ने अबाध आने की अनुमति दे रखी है।
1: हाँ भाई,
2: आइए ब्रह्मचारी जी।

0: देवी वयस्का तक सूचना पहुंचा दी गई है। हाँ। उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा है।
1: अच्छा अच्छा,
0: आप विराजिए। हाँ।
2: प्रणाम दीदी।
3: जीते रहो चंद्र। कहो क्या बात है, तुम तो दो दिन बाद लौटने वाले थे, मन नहीं लग रहा तुम्हारा इस वैभव की नगरी में?
2: नहीं दीदी, दृश्य के नेपथ्य में कुछ ऐसा है जिसे समझ नहीं पा रहा हूँ और आत्म प्रवंचना स्वीकार नहीं। महामात्य की अधीरता, महादेवी का विषाद और आर्य त्रिलोचन के संबंध में आपकी व्यग्रता, कुछ तो है जो अबूझ है। दीदी, महाराज की अनुपस्थिति एक बड़ा प्रश्न है, अवंती का रहस्य। महाकाल के दर्शन कर लिए और सोचता हूं कि कल प्रातः लौट जाऊंगा। प्रश्न तो यह भी है कि बेशक त्रिलोचन और आपकी मुखाकृति में इतना साम्य क्यों है?
3: चंद्र, तुम थोड़ा सा उपहार ग्रहण करो, मुझे भी देवी वसुंधरा के पास औषधि लेने जाना है, मेरे साथ ही चलना।
2: आप देवी वसुंधरा से परिचित हैं दीदी?
3: मैं प्रायः उन सभी को जानती हूँ जिनसे महादेवी की भेंट होती है। क्यों?
2: सुंदर और सुशील तो होंगी।
3: होंगी क्या, निसंदेह हैं, किंतु तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो?
2: आर्य नागदत्त उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते? देवी वसुंधरा उनके साथ हो तो उनकी चिंता कुछ हल्की हो जाएगी।
3: संसार भर की चिंताएं तो तुम्हें है चंद्रसेन। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ।

0: जीव पर आरूढ़ होना कल भूल हो गई थी, व्रत भंग का फल भी मुझे मिल गया।
1: तुम राजा के अतिथि हो, राज्य की मर्यादा तोड़ोगे? व्रत उपवास आदि आश्रम में एकांत के आचरण है। ये राजधानी है चंद्रसेन, चलो रथ पर बैठो।
0: अच्छा दीदी।
1: चलो सारथी, देवी वसुंधरा के आवास पर। लो, आ गए हम चंद्रसेन। अब उतरो।
0: अरे,
1: महामाती तो यहाँ पहले से ही हैं। उनका रथ दिख रहा है।

0: देवी वयसिका रथ द्वार पर प्रस्तुत है।
1: अच्छा अच्छा
2: चंद्रसेन चलें।
1: चलिए दीदी,
0: किंतु देवी मैं

0: अनुचरी आकर वैसिका को अतिथि कक्ष में बैठा देती है। महामात्य और देवी वसुंधरा वहां पर आसन ग्रहण किए हुए हैं। देवी वसुंधरा कहती हैं,
1: आओ आओ वैसिका, बैठो।
2: मैं ठीक हूं देवी, महादेवी ने मुझे आशा दिलाने के लिए भेजा है। मेरे साथ सेवाश्रम के ब्रह्मचारी चंद्रसेन आए हैं। आपके लिए उनके पास एक पत्र है, वे बाहर बैठे हैं।
1: ठीक है वैसिका।
3: वो ब्रह्मचारी तो राजकीय अतिथि गृह में ठहरा है ना?
2: उसने वो आवास छोड़ दिया है देव, अब आश्रम लौटना चाहता है।
1: ठीक है वैसिका, मैं राजमहिषी की औषधि लाती हूँ, तुम यहीं रुकना।
2: जी।
1: यदि चाहो तो आश्रम के पत्रवाहक को यहीं बुला लो।
0: ये कहकर देवी वसुंधरा औषधि लेने महालय के अंदर चली जाती हैं। महामात ने वैसिका से कहा,
4: आओ बैठ जाओ वैसिका। खड़ी क्यों हो?
2: दृष्टता होगी देव।
4: वैसिका
2: जी,
4: तुमसे कुछ कहने की इच्छा है। सोचता हूँ और फिर रह जाता हूँ। संकोच भी है और भय भी।
2: उज्जैनी के महामाते को भय? सहज विश्वास नहीं होता देव।
4: वैसिका, कभी कभी पद की प्रभुता भी भय का कारण होती है। ये 10 वर्षों से तुमसे कहना चाहता हूँ किंतु आज तक कह नहीं पाया। वैसिका,
2: आज कह दें।
4: नरेश नगर में होते ना तो कदाचित कह डालता। उत्कटता से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रयास करूंगा कि 10 वर्षों का भार उनके समक्ष ही उतार दूं।
2: कह देने से यदि भार उतरता हो तो निश्चिंत होकर मेरे सामने कह डालिए देव। वचन देती हूँ कि मैं किसी पर प्रकट नहीं करूंगी।
4: हाँ।
2: प्रीत दासी इससे अधिक क्या विश्वास दिला सकती है?
4: तो सुनो वैसिका, चाहो तो हंस लेना। समझ लो कि मैं महामाते नहीं हूं। मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूं। क्या तुम्हें स्वीकार है वैसिका?
2: एक बात कहूं महामाते?
4: हाँ, कहो।
2: आपकी साहसहीनता ने 10 वर्ष यूं ही गवा दिए। आप समर्थ हैं, वैसे भी मुझे अपनी सेवा में ले सकते हैं।
4: हाँ, हाँ, महादेवी को स्वीकार होगा?
2: मैं बना लूंगी।
4: तुम वैसिका, तुम

महामात्य लौटकर सीधे अपनी पीठिका पर जाकर बैठ जाते हैं। तीव्रतर हुई सांसों पर नियंत्रण पाते हुए मस्तक पर आया पसीना पहुंचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे भूकंप आ गया है जिसमें ये भवन

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का सातवां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार पद्म भंडारी, वैसिका प्रमिला दिवाकर, चंद्रसेन बद्रवास्ती, पहरुआ कमलेश जैमिनी, गोप विवेक सावरिकर मृदुल, वसुंधरा ज्योति केने, महामात्य अरशद इकबाल, संयोजक राकेश ढोंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से पैठार गांव आ जाते हैं। वो पैठार छोड़कर जाना चाहते हैं, परंतु कुछ विपरीत परिस्थितियां उन्हें रोक लेती हैं। वे विपरीत परिस्थितियां क्या हैं? ये हम जानेंगे अगले भाग में।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर अपनी चर्चा की पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसरों के साथ युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुर, सतना, सिवनी, बालाघाट, राजगढ़ और बैतूल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। श्राइन बोर्ड ने कटरा में फंसे तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क लंगर सहित व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारत की PV सिंधु का मुकाबला महिला सिंगल्स के 32वें राउंड में अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का सामना 32वें राउंड में जापान के युशी तनाका से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में डिजिटल साक्षरता समय की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार और सरकारी सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल हो चुका है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस युग में बैंकिंग, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए डिजिटल साक्षरता उतनी ही जरूरी है जितना कि सामान्य रूप से पढ़ना लिखना। अगर हमें डिजिटल रूप से सब काम करना आते हैं तो हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं और UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से सुरक्षित लेनदेन कर सकते हैं। गाँव में रहने वाली महिलाएँ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे माध्यमों से डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। बदलते कार्यक्षेत्र में तकनीकी ज्ञान होने से नौकरी की भी अच्छी संभावनाएं बनती हैं। ईमेल भेजना, ऑनलाइन मीटिंग करना, डिजिटल माध्यमों से जुड़ना, अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखना, साइबर धोखाधड़ी से बचना, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखना आदि काम हम सरलता से कर सकते हैं। सखियों, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी डिजिटल माहौल में पल बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि कोडिंग और सोशल मीडिया जैसे विषय अब बच्चों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। विद्यालय में शिक्षक भी डिजिटल साक्षरता पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आज हर स्टूडेंट किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर निर्भर है। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता उनकी शिक्षा और भविष्य के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सखियों, हम महिलाएं अपनी कला और हुनर को घर बैठे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर और अधिक निखार सकती हैं और अपने हुनर से परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकती हैं। तो सखियों, आप आज से ही अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानें और उसको डिजिटल माध्यम से एक नई पहचान दें।

0: सखियों, हम समय समय पर आपके लिए कहानी और वार्ताएं लेकर आते हैं। आज उसी कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं ये वार्ता, नशा नहीं नई दिशा चुनें, नशा मुक्त भारत अभियान। इसकी वार्ताकार हैं शालिनी कुलश्रेष्ठ।
1: बहनों, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो न केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न है। आज हमारी चर्चा का विषय है नशा नहीं नई दिशा चुनो। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं, और यदि नागरिक किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। यदि युवा स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक होंगे तो देश निश्चित रूप से प्रगति करेगा। लेकिन यदि युवा नशे के गिरफ्त में आ जाए तो परिवार टूटते हैं, समाज भी कमजोर होता है और राष्ट्र का विकास प्रभावित होता है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि नशा क्या है। नशा वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति किसी ऐसे पदार्थ का बार बार सेवन करता है जो उसके शरीर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ई सिगरेट, अफीम, चरस, गांजा, स्मैक तथा अन्य मादक पदार्थ नशे की ही श्रेणी में आते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि लोग नशा क्यों करते हैं। इसके भी कई कारण हैं। कुछ लोग गलत संगति में आके नशा करने लग जाते हैं, कुछ लोग दोस्तों के दबाव में भी आकर नशा करने लग जाते हैं, तनाव और अवसाद की स्थिति में भी नशा करते हैं, दिखावा और फैशन के पीछे भागते हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं उनके लिए भी वो लोग नशा करने लग जाते हैं।

0: है बेरोजगारी, फिल्मों और सोशल मीडिया का प्रभाव और जिज्ञासा। ये इतनी सारी समस्याएं और कारण हैं जिसके कारण लोग नशा करने लग जाते हैं, जो धीरे धीरे आदत बन जाती है। नशा व्यक्ति के शरीर, मन, परिवार और समाज सभी को नुकसान पहुंचाता है। शारीरिक तौर पर भी इसका सबसे बुरा असर पड़ता है, जैसे हृदय, फेफड़े और लीवर यानी यकृत की गंभीर बीमारियों का होना, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना, समय से पहले बुढ़ापा और मृत्यु का भी जोखिम बना रहता है। नशे का प्रभाव हमारे शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। तनाव और चिंता का अवसाद, याददाश्त का कमजोर होना, निर्णय लेने की क्षमता का कम होना, चिड़चिड़ापन और हिंसक व्यवहार, ये व्यक्ति तभी करता है जब वो एक नशे का आदि हो जाता है। अगर हम इसके सामाजिक प्रभाव की भी बात करें तो नशे के कारण परिवार में कलह बना रहता है, घरेलू हिंसा होती है, बच्चों में भी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अवरोधों में भी वृद्धि होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करने लग जाता है तो उसको इतना नहीं ज्ञान होता और जिससे वो सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है। शिक्षा और रोजगार पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। नशे का आदि व्यक्ति अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे पर खर्च कर देता है। धीरे धीरे परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और पूरे परिवार का भविष्य खतरे में पड़ जाता। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। आज समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से नशा एक बन चुका है। अब हमें यह समझना होगा कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है, चाहे आपके साथ कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन नशा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जीवन में तनाव भी होते हैं, असफलताएं भी मिलती हैं, अकेलेपन से भी लड़ना होता है, लेकिन इन सब से बचने के लिए नशा नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच, परिवार का सहयोग और अच्छे मित्रों का साथ आवश्यक। अब हमारे सामने यह भी प्रश्न आता है कि नई दिशा क्या हो सकती है। नई दिशा का अर्थ है जैसे शिक्षा को अपनाना। अगर सभी लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति नशे की तरफ अग्रसर नहीं होगा। खेल और योग से जुड़ना, संगीत, कला और साहित्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में योगदान देना, समाज सेवा यानी लोगों की सहायता करना, लोगों के लिए खाने देना, अपने लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना। हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए जिसे उसे पूरा करने में उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए, जिससे उसका ध्यान कभी भटकने ना पाए और वो नशे की तरफ अग्रसर ना हो। यदि हर युवा अपने जीवन का उद्देश्य तय कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नशे की तरफ जाए भी और सोचे। उसके जीवन में नशे का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। समाज की भूमिका भी नशे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों के अच्छे मित्र बने, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। घर का वातावरण अच्छा होता है और माता पिता में आपस में संबंध अच्छे होते हैं तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। विद्यालयों में समय समय पर जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। हमारी सरकार नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे काम कर रही है, जैसे जन जागरूकता अभियान। सरकार समय समय पर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाती है कि हम नशा करने से कितना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, जिनमें स्कूल, कॉलेज, गांव और शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालित किए जाते हैं जहां लोगों का उपचार और परामर्श दिए जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में भी थोड़े दिन रखकर उनका उपचार किया जाता है और उन्हें उससे मुक्त कराया जाता है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाते हैं। शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में भी विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लग जाते हैं। लेकिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी जाती है तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। हेल्पलाइन और परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। जरूरतमंद लोगों और उनके परिवारों को सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए परामर्श सेवाएं, हेल्पलाइन संचालित की जाती है। सामुदायिक भागीदारी भी हमारी सरकार करती है, जैसे सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर नशा मुक्त अभियान चलाती है। आइए हम सभी आज यह संकल्प लें कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा या करूंगी, किसी को नशा करने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा या करूंगी। मैं अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय योगदान दूंगी। इसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर कविता रखी है, नशा नहीं नई दिशा चुनो, जीवन को खुशियों से तुम बुनो, स्वस्थ तन हो निर्मल मन हो, हर चेहरे पर मधुर सा धन हो, नशा छीन ले हंसी और सपने, तोड़ दे जी अपनों से अपने, क्षण भर का यह मीठा सुख दे जाता जीवन भर का दुख, आओ मिलकर ले यह ठान, नशा मुक्त हो अपना हिंदुस्तान। धन्यवाद
1: सखियों। अभी आपने सुनी ये वार्ता, नशा नहीं नई दिशा चुने, नशा मुक्त भारत अभियान। वार्ताकार थी शालिनी कुलश्रेष्ठ। वार्ता के बाद अब हम आपसे चर्चा करते हैं, बारिश में घर की बगिया की देखरेख कैसे करें। सखियों, गर्मी की तपन झेलने के बाद बारिश का मौसम आते ही हरी भरी बगिया हमारे मन को सुकून और खुशी से भर देती है, लेकिन इस समय हमारे पौधों की अच्छे से देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। बारिश के मौसम में पौधों को पानी तो भरपूर मिलता है, लेकिन जल भराव और धूप की कमी से पौधों में फंगस और कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बगिया की सही देखभाल के लिए गमलों की जल निकासी को दुरुस्त रखें, ज़्यादा बारिश से नाजुक पौधों को बचाएं और जैविक खाद का ही उपयोग करें। हर गमले के नीचे बने ड्रेनेज होल को चेक करें ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाए। अगर गमलों के नीचे पानी इकट्ठा करने वाली प्लेट्स लगी हैं तो उन्हें हटा दें, क्योंकि रुके हुए पानी में पौधों की जड़ें गल सकती हैं। अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो नाजुक पौधों, छोटे पौधों और सब्जियों को प्लास्टिक शीट से ढक दें। अपने इंडोर पौधों को घर के अंदर ही रखें, लगातार बारिश उनके पत्तों को नुकसान पहुँचा सकती है। बारिश के पानी से मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, इसलिए समय समय पर जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। बारिश के बाद मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें ताकि जड़ों तक हवा पहुंच सके। सड़े हुए पत्तों और टहनियों को तुरंत काटकर हटा दें, क्योंकि नमी में इनसे फंगस फैलती है। कीड़ों और फंगस से बचाने के लिए पौधों पर नीम के तेल और पानी के मिश्रण का स्प्रे करें। और सखियों, अगर आप नए पौधे लगाना चाहती हैं तो ये मौसम उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय बेला, चमेली, कामिनी, गुड़हल, मैक्सिकन पिटूनिया, कनेर, चांदनी, अडेनियम, गुलाब, नागचंपा, जिरेनियम आदि लगा सकती हैं और अपनी बगिया को हरा भरा और सुंदर बना सकती हैं।

सखियों, अब हम गीत के बाद चर्चा करते हैं समय समय पर रूटीन हेल्थ चेकअप कितना ज़रूरी है। सखियों, हम अपने परिवार का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखती हैं, लेकिन कई बार अपने शरीर में अनायास होने वाले बदलाव को हम नज़रअंदाज करती हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। कई बार शरीर में होने वाले कुछ सिम्टम्स हमें बीमारी का संकेत देते हैं, पर हम महिलाएं ये सोचकर उस पर ध्यान नहीं देती हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, शायद हमने कल बहुत ज़्यादा काम किया था, शायद हम बहुत देर तक खड़े रहे थे तो थोड़ी परेशानी हो रही है। यही हम गलती करते हैं। हमें अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ को भी सीरियसली लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि हमें समय रहते तकलीफ़ का पता लगे और हम इलाज करवा सकें। और सखियों, हमें अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो भी हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए समय समय पर अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, ताकि कुछ बीमारियों जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को शुरुआती दिनों में ही पता लगाने में मदद मिले, जिससे उनका इलाज भी आसान और प्रभावी हो जाता है। रूटीन चेकअप में आमतौर पर ये जांचें होती है, ब्लड प्रेशर की जांच, खून से जुड़ी समस्याओं के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, डायबिटीज़ की जांच के लिए ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत के लिए लिपिड प्रोफाइल, हार्मोनल संतुलन के लिए थायराइड आदि शामिल है। इस प्रकार सखियों, आप अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक और समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें

ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी सखी निरंजना को विदा लेने की अनुमति दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस मकर संक्रांति,
1: या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो?
0: क्या विशेष अधूरी रह गई पैसों की वजह से?
1: अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मणप्पुरम गोल्ड लोन के साथ।
0: आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ पेस्ड दिनों का लगेगा,
1: ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800420223। मणप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।
0: आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस मकर संक्रांति,
1: या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो?
0: क्या विशेष अधूरी रह गई पैसों की वजह से?
1: अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मणप्पुरम गोल्ड लोन के साथ।
0: आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ पेस्ड दिनों का लगेगा,
1: ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800420223। मणप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।
0: आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस मकर संक्रांति,
1: या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो?
0: क्या विशेष अधूरी रह गई पैसों की वजह से?
1: अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मणप्पुरम गोल्ड लोन के साथ।
0: आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ पेस्ड दिनों का लगेगा,
1: ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800420223। मणप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। इसमें पहले सुनिए वैशाली मोघे के स्वर में भजन।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रतिदिन सुबह 7:20 से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

ये गीत था फिल्म सर से, जिसके लिए आवाज़ थी कुमार सानू की और संगीत दिया था अनु मलिक ने।

हाफ गर्लफ्रेंड इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना एश किंग साइशा तिरुपति की आवाज में, और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।